कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अब हम नोय तक एम तेरो अले विकुंग ते यारन लंगा विकुंग ते ही सो अप्यांग थर छा ते ही कशा आप में से जो चंग हम मोम आजे वी आ वी एली आ इन मेल चुजोक रन ते वेल आ जो कर ले जा मखा दिंग माशेल ओ मेसेज पोच या सक्सो रिल रू छेसी अच्छा पोसी अस्वाल सी अच्छा छेसी है दोंग दासी अलेर सी ते कंटी दोन नी ते रोवी कुंग ते अब हम नुआम चीन तक एम स्टूडियो ही ओ कल दिन नुआम तू हिंद हन चियांग तक और थोन सुर

सेलुला दोस्तों, आप अपने प्यारे एसएमएस में भेजते रहिएगा और हम अपनी इस खंड को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम जो सुनने जा रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। ये होगा आशा भोसले और किशोर कुमार के आवाज में, कब के बिछड़े हुए, और फिल्म था लावारिस, 1980 सौमी वे खानिया हेंगलाही कल दूर तुक छिन्ते निया सुवान सुवान हेला ने निया ने है सेगमेंट आहिया ने करीन ओ दिल दिल दो ननी ओ। तो चलिए सुनते हैं आशा भोसले किशोर कुमार के आवाज में, कब के बिछड़े हुए।

तो चलिए आपके SMS की ओर बढ़ते हैं। जे रजा मैं आर जे रजवाल भाई हो दे इलंगी न्याय और तोरिन कार जे वी एली रंती रोती दी थे कना रूम रूम तो ना यान आर जे रजवाल भाई नंग चुहे रिमोई रू ना चल कार बुलटन पुई तान चक दूला उचे सिम तेरों ते जे रजा मी ओवर ले तो का ओ ही इसे चाक ngoi ngoi ti hi ka chamo tu ban sa ni ling in dihan ka oi don se hi ni top me ni ahu pur po ka ring se achang lo nuam hi ti hor hor lu to ka mojel exam hianin kan duty che ai so a beng hi a han tun nga la a mi thi an han san nga la ma alo lim lu tok thin hi तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इस खंड में हम सुनेंगे पुराने जमाने के गाने जो कि हमारे दिल लुभाने वाले गाने थे एंड यस आज भी हमारे दिल को बहलाते हैं। इसी गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। हम सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग देखा एक ख्वाब।

तो चलिए आपके प्यार भरे एसएमएस की ओर बढ़ते हैं। के वाला ही आना आरजे सवाल वो एक रिम दिलेंग दोन से रंतिया अते रेंग में के वाल कनी रिम दिलेंग दोन अनि तिहान वो इनी चुमो अनुआम दोन ह्यान कश्यानी एल जे साइलो ह्यान सवाल वो इते गनिंग लो चे के चे वो इन ची इनकोम लेंग ओ रंतिया इनकोम दोन सियांग लुत तुक अप्यांग प्यांग थर छदेव देव ही चु कोम से ए चु कोम नुआम कत्यामो इन एस एम एस तेन इन मी हि तिलीमा स्टूडियो रन कल तेह कर रन कल दोन तेह कसोई फौ थी नंग खान इन कभी थाई हन इन रन चाम चुआई चुआई थी नी मो चुवान चुआ नि नुआम हि कतिया मेंग मोई तेह जोल बोई नमस्ते ड्यूटी नुआम ले रन ती आ ए इन जारा का ड्यूटी नुआम एम एम दो नमी लो गाय थरेंग तुर खान इन कल सोम से उनी आ तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे ये है किशोर कुमार और आशा भोसले के ही आवाज में पहले प्यार की मुलाकात।

तो चलिए आपके प्यार भरे एसएमएस की ओर बढ़ते हैं। अभी कुंते ही आने जो कर ले जामत हुसैचू मैं ना थाक मई तो अफेरे सी अटोंग थे जिसे से पुआन थ्री लाइक थ्री ले ले मई से रोंती ने इलो श्याम मो जेल जाम है भी कुंते ही आने रोन थोफू ते मई ने ओ कर थ्री लाइक लो थ्री ले ले रो से तीचे ने सी जते ही आना जे जो अब इत बैले तीन गोरो की ना कालो की ती खलो प्ले के ते डिस्को डेंसर फिल्म कारंती आ हेला ही कलो दा छखिया वंगा कलो छिन छियांगा चन नेक्स्ट सेगमेंट आ कन प्ले दो ने ओ सी जत सन सु हे हेला या हियानी प्ले टू ही कलो दा ए कन लो दा छसा तो सी अ चुवान चुआनिन नेक्स्ट टाइम रा चन कन गाय थंगे नगे यंग आ ओले चलिए इसी के साथ वेल हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है कन सेगमेंट ताना लनुंग बेरंगे थाक न होने लाओ निले तरेंग मया अमाय रोड सू 11:20 दा सोम पकड़ ले सोम निया यहाँ निंग रोन कीर ले दो ननी ओ चुमी छुंग जान इन ती तुर चुल कल न तुर ती नो ने चुन लो वे इक्वालू ला लो ते इक्वालू ला लो ती जुंग सुंग ला दा सोम पकड़ ले सोम निया आर जे जवाल बुई ने गनी तोंग ले दोन ती खरी रुआ खा लो ने उला कनी तोन ले गे पोखा कबे से बो कनी ओ चुन ओ जेल जा महिया निन आर जे जवाल बुई भी कुंग ते कोप्लोर थिया मा मि डॉक्टर पनवित पनवत ते से करानी जी आर जे वी एल आई इन टू एम मेल था आती मो अमित सवन छे एम एवरीवन ति वेल तानी सु जेल जा मही सो अपॉन टू हियर रियल रो आई हैड अ पिलो रे रेंग ई अटेंशन ही एंगे के मा यानी ना रन हे अ डाफुल टॉप नी सु अथि अथु सोइत्यान हे हे एंगे अन रन सोइवेल दो अछिन ता मा से रियल रो तक तक हि चानिन मी हि चो अंगाई नी ति हि हाई रोल लो फड्रोल लो याना लंग थिन बॉक्सी आ इंग्लिश खोले हे मि सेगमेंट ता ना कन लन नुंग बेर कन लो गाइ था खुन लो थेंग ता तो दोस्तों इस खंड की सबसे आखिरी गीत हम सुनेंगे बहुत ही प्यारा सा गीत। जैसे मैंने आपको बताया कि इस खंड में हमने सुना है पुराने जमाने के गाने जो कि हमारे किशोर कुमार लता मंगेशकर के आवाजों में उनके प्यार भरे गाने हमने सुने। उम्मीद करती हूं कि आपने इस खंड को बहुत ही इंजॉय किया होगा, आपको जरूर पसंद आया होगा। और खंड के सबसे आखिरी गीत हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, यह है किशोर कुमार के आवाज में, रिमझिम गिरे सावन और फिल्म है मंजिल। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM जोए 100.7, आपके साथ है आरजे ज़वाल वही, और मैं फिर से वापस लौटूंगी ठीक 11:20 में। आप हमारे साथ लगे रहिएगा दोस्तों इस खंड के लिए अलविदा।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज़वाल भाई। आज का हमारा ये दूसरा खंड यही शुरू होता है और ये जो खंड है ठीक 12 बजे तक चलने वाला है, इसलिए आप अपने दिल थाम कर बैठिए क्योंकि इस खंड में मैं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे गाने सुनाने जा रही हूँ फिर से। हमारे फर्स्ट सेगमेंट में हमने सुना था बहुत ही पुराने गाने जो कि 1980s किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाजों में हमने गाने सुने थे, तो इस खंड में हम सुनेंगे थोड़ा सा नया नया। तो चलिए एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ इसकी शुरुआत करते हैं और शायद आपने ये आई डोंट नो आपने कभी सुना होगा भी कि नहीं, ये नया नया रिलीज हुआ है कॉकटेल फिल्म से, यस, जिसमें रश्मिका नंद और शाहिद कपूर एंड कृति सनन जी ने किरदार निभाया था। एंड मुझे ये फिल्म देखने का बहुत बहुत मन कर रहा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ, मशूका।

चलिए आगे बढ़ते हैं। और यस जेलजामा मैसेज रन थिंगा थिंग पीते इन ब्रेक चल वेलते मंगनयांग एंगे रन लन ले ल कन सियारंगे ओ आरजे जोल बते नमस्ते सुप्रभात आरजे मोव इनसु एगो मछानिन के शेलो हिंदी सेगमेंट टू मेडिटे ते रन ड्यूटी हिचन हिंदी सेगमेंट इन हेर छवा हुन कंगाक्लेन छि कंगाक्लेल छिन खानिया वइने रो हिंदी सेगमेंट कंगाक्लेल ना बो फिक्स दे एंगे छन यांग मि हन शेलते नेक्स्ट song itan tlim efem zo ngai tlu tu tam po arantia a chan ne wang zu jera za mangun de wino ngai thla la rj as well by segment ke ink it thla le to lu tu ko mo chu ban swan in ilo ilo phur to lu tu kha i chang ul vel to ni chu chu ban swan in ti khan mi no ngai thla pa se la pol na dang dang song song te hi don bel zel hi karinga nang hi chu chuwai ron khatliam she re reng lo la ti kha kan han in cha du ni chan in organ chian dang te po kha chun chol ten lo mangye ni engen ti o ron in lar sup sup ro o in sms ka ka chiar chak to nia to chali next time sunte hain jail zamatan te ro te in kan ti vedo ne mani daru desi See you.

बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, चढ़ी मुझे तेरी ऐसी जैसे दारू और देसी। ओके, इसी के साथ आपके मैसेज आए हैं। अलसे साइलो हिया निजाल बोलते मोइते उदे और अंति आते रेंग में मोइते उदे भी कर नाइ थजेल दो ननी ओ मिलो नाइ थरेंग उला लमोइ तक तक खानी करीन ओ सुन सोम जेल दो नहीं ला ही इन लगे था कि कति छेना के जो इन वेम का शलो है मानी या उमचांग तेरे खोया मोहन कल चांग ते पो हियानिन इयरफोन ते पो हि हन वा मे चिन तैला इ लगे था कि लो नाम दे ना बिक तक इन कति छेना है एफएम थोवांग पोनि लविन एफएम छिम छिम हि कि जो ngai tha ki nuam ka hi ka tilu tuka all india radio fm himo fm zo hi ngai tha ki nuami ka ti topani chu achan chu live program ania la moi tak tak te playlist te kan ta china

playback chop te hi nilawa enge kan record chop te hi nilota in keep hi life ani na hianin anua mi ka ti ni chu jin ko nga te hian ngei thlai radio nge nge hi su ngei thlaki alo nuam bi khe ka ti thina ni chu mania enge khoya moni latak te kan lo jina kan local te ni phei chuanin han ngai thlai la lo tok mol mol te min lo kom mol mol tu te tong te alo om hianin a khor thak lo hei jin kong te hi nuam bi khian ka thina chuwan chani nang ni poino niam ka shela fa radio hi avan lo lut tak em o tikha voini a hian in kan han tui ni vel du ta ni chuma vi kung te hian a jezol boilo life la ka muchak che lom ran ti a oi life hi ni e cha kom chin in mu te hi cha kom chin mai ro chu life program hi hun pa ngai adwan savek he ni thinawang hiani kan du du nai hanin aron live ring what they big tin box silo movie kung te maro chu pathian zara kan damanga live akanin to hun te pola om nge yang ti kha kan base han base put meang on chon ke wala hianin zawe galo om wearing zeleron tia oh hello om wearing zel te okay wali om hianin tha hi mong thina ni i engemi hi lo wap ve shim shim hiani thamwan thaki kan tia chuwan chanin ilo om char char khangai o milo ngai thak char char ngai a khat to khanin iron rik le hloi iron rik le hloi zel te khangai nia o in ngoi bo san oi lo kan tia he dar som pani thling hun kan nei a chawangin hun te hi kal chak a kal rang mei thin bok si mo to chali dosto aapke pyar bhare sms samay mila bahut acha laga mujhe aap isi tarah apne pyar barsate rahiye और हम आगे चलेंगे आगे बढ़ते हैं अपने अगले गीत के साथ जो कि है ये भी आपको बहुत पसंद आने वाला है एंड यस तो नम एस एम एस मिरोन थोन तु सोंग सोंग तितान खान तु नगन लंगई थक ले तो ही करन थन सक दोन बुक चोने नेक्स्ट टाइम सुनेंगे बहुत ही प्यारा सॉन्ग एंड यस दिल थाम के बेटिए ये होगा झूठा ही सही फिल्म से एंड ये एक लवी मैशअप सॉन्ग है एंड उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए तो नम एस एम एस मिरोन थोन तु सोंग सोंग तितान खान 您个人参赛这位呢啊。

आज आपका सिर्फ एक ही मैसेज मिला है पूरे दिन। उम्मीद करती हूँ आप हमारे साथ लगे रहेंगे, एंड उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक है, कहीं कहीं तबीयत खराब तो नहीं, क्योंकि आज आपका एसएमएस बहुत ही कम मिल रहा है मुझे। हमारे साथ लगे रहिएगा। सन एसएमएस मिरोन थन तुते मिंगमोई तेते के गई ते अजेल सा अभी कुंग तेते दुर्गेश ते कतान खान नेक्स्ट सॉन्ग ही करन थन सकदोन से हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो नेक्स्ट हम जो सुनने जा रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त और प्यारा गाना है ला तू नगन गई थक तो रही तू नाया ये मूवी बॉलीवुड फिल्म हिट लुट तुक मई खमी खमी फिल्म अमी ए अन प्ले बैक ला खानी अमो ही के तेल तुकाते द संग तुपा जोंग जोंग अ संग तुपा ही रणवीर सिंह निया धुरंधर टू अमी ने मई खानी मो मु नोम ही के तेल तुकाते हे स्टोरी ही अतक तक लो नि जोंग जोंग बक तें खान के मानी इंडिया रम कई नोई थिल इन एंगे अमा ही स्पाई लो निया खांग जोंग जोंग नेन खानिन अ मु नोम ही के तेल तुका नंग निपन इन लोला एन लो नि चन लो एन नि नि तुर खंग गन दु सक कन सा दु बक चो नि चुम हेमी फ्लिम मी अन ला येंगे हिट लुत तुक मे नल के ति एम एम मे मो एनर्जेटिक लुत तुक मे हियानिन तुन छुन आ हियानिन इन लो लिम पुई का बे से ओ जाई सजना।

Listo, el segmento está Message Number. Canción es una la otra letra. Morris, el arquitecto, de play le tour song song, David Sargezo, OFM, la tour song song, tan clan, fique. A big to gin quam mun lo carla dine, song song, tan clan, porque son voy en hun chata, among so zel, touring de sagna clan, serenti. Ah, Morris, come on, lom tearing, em, nang po voy ni, FM zo, oi, run bell, to gin hun chata, clearly mom, takilom, man, ye, kakadu sakse. Ah. तो चलिए दोस्तों इस खंड की सबसे आखिरी गीत हम सुनेंगे एंड मैं फिर से वापस लौटने वाली हूँ ठीक 2:35 आकरण ले ले दो दिन इस मोदान ही ले मैं समझू पंगा आकरण कर ले दो ना मिलोंगे थक ले ठेव का कभी से यार चाहे इन ती तुर चोलंग अगर देखा लो ती संग संग वाला चाहे 2:35 आकरण इन तो ने ठेव गन तुम्हां चाहे क्या tuk mei in sakuta sak ngei mei he tiang lam hi tu nai chu in om in om chang in no panglo ma ka siama i du ve

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था किकी जी की आवाज में यारो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग। चलिए इस गाने के साथ झूमिए, नाचिए, गाइए। और यस, मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आपके SMS ज्यादा हमारे पास पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी दोस्तों लगे रहिए हमारे साथ और हम भी लगे रहेंगे इस प्यारे से गीत के साथ।

तो चलिए आपके एसएमएस की ओर बढ़ते हैं। जे लजा महियान ये ना जे ज्वाल बोई इंग ओम वे व्याओ लो नाई मोई ताइन सेगमेंट ओपन नि रिंग मई तलांग तकिन होला ई होकोंग अफिम खुरले अंग से ओ लिर थई खलपोन इमा मी ले इनुंग मी ते जाय ngai खल्ला खल सक बुत बुत लवियन मी कों कल नाई ते लो बसु थो थो देंगे ई सकमिंग पु लो या नि नुंग छवेत बत सिया नेक्स्ट सॉन्ग ता नेक्स्ट सॉन्ग इतान छ कबन ngai ले दोन से एम ओर अन टिवेल ऑन ट्रप देयर वेल अन इज जे जाम ते हि मो engle khole ni e pathian zara kan damanga studio kan in mule thwai tu rain nga yang o zamte bo athom na treat ka lau treat tu tu sela lawin loi mal som na khalo dong tu tu tur khan in du sak na kan hla na ni chan helai hianin ma hi miron tia hello hello aming ka shilawa amar rosmiron hi kyo me ka lom hle mai तो चलिए नेक्स्ट टाइम सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे सॉन्ग के साथ जारी रखते हैं। ये है दिल चाहता है जाने क्यों।

तो दोस्तों, इस खंड की सबसे आखिरी मैसेज पढ़ने का वक्त आ गया है। कि ऐतिह्य निस्वा बकरी केलपुई निया बकड़ा केल पा लो नी लेता आ बक्षिम शि मेंग सोय नहीं था वो ये हर थे बक्षिम शि मेंग दी नंगे न्यांग रन ती मो उमे या ए खै हे ही होमवर्क का कने इंगा बक्ति शिम शि मेंग दी नंगे ती ही कन जोंग छ्वाक तक तक नंगे तुन कार छुंग ह्यान चोन कनि तोन ले फेले खानिन कनि छांग थे तो रंग आयंग ओ के गे ते आ मिलोंग ए थाक चर च मिलोंग ए चान वंग वंग आइ दो दनी आ इन एसएमएस तुम तक तक तिंगे नोम तक तक ति मिरोन थोन छि ना इन ने नालोम तो कसै तक मेवा इन जारा स्टूडियो आ ड्यूटी ते हीरो अलो नोम छि ननी मो इन हुन ते छत तक इन मन खा कबे सया चित स्वान ए सेगमेंट ता ना गन लन नु बेर गे था कलो हुन ता आ हेल नु बेर ही नि सिना हन नो थन ता गन खा प्यार के पल मंग यानि गन इन था दो ननी ओ हुन मिन मन पुइ तु ते सोंग सोंग एसएमएस रन थोन तु ते चुंगा खान लोम थु गन सया कदिन तोनले फदोनिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम जॉय 100.7। आपके साथ है आरजे इज़वाल बोई। इसी खंड के साथ दोस्तों, आप सभी को मेरा टाटा बाय बाय।

0: هي كاشواني اف ام زو اوي زا بوينت برسري اني ا وهين هي جو نسوم هي لبقوا توچني اني ا وين تانا كن هون تو خدنا كن نو زو تا هون من من بوي تو تي زونغ سونغ سونغ لوم تو كن سويا تاي لم كن هون هي دالي لي چن بيا كن چن دون اني هون هي من لو من بوي لي چو تورين كن انسوما مانگ چا مت دي فيك ولي
1: نمسكار आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि बार बार नियमों का उल्लंघन, धोखाधड़ी और उपभोक्ता हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में

0: कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या 7 हो गई है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा है कि कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and UT Police at 5 p.m. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The awards reflect India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the Northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. President Murmu had earlier conferred gallantry awards at the Defence Investiture Ceremony Phase 1 at Rashtrapati Bhavan on the 8th of this month. Prime Minister Narendra Modi has departed for India after concluding his successful 3-day visit to the East African country, Seychelles. On the final day of his visit, Mr. Modi visited and offered prayers at the Navshakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of the Indian diaspora there. Later, the Prime Minister paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park today. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi's 3-day visit to Seychelles marked a significant step in strengthening bilateral ties. During the visit undertaken at the invitation of President of Seychelles, Dr. Patrick Harmony, the two leaders held wide-ranging talks covering cooperation in healthcare, education, capacity building and maritime security and defense. They also discussed regional challenges in the Indian Ocean region, including illegal fishing, drug trafficking and piracy. Several MOUs and agreements in areas such as UPI, health, agriculture, shipping, space cooperation, extradition and line of credit were also exchanged between the two countries. Mr. Modi was also conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. He also addressed a special sitting of the National Assembly, becoming the first Indian Prime Minister to do so, reaffirming India's commitment to its long-standing partnership with Seychelles. With Ankit and Bisnu, this is Vishal Das, Akashvani News, Delhi.
1: The Central Board of Secondary Education, CBSE, today issued guidelines on the three-language policy. In a statement, the board said the current batch of Class 10th will not have to follow the new language policy. It also said the current batches studying in Class 7th, 8th and 9th will also not be required to give the board examination in the third language when they reach Class 10th.

हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम जो वॉइस ऑफ द सम लव 7 पर। मैं हूं आपकी आरजे मोइतेई और सोमवार की शाम को, प्यारी सुनहरी शाम को आप सभी सभी का स्वागत करती हूं। बहुत बहुत ही सुंदर एल्बम के गीत, हिट एल्बम के गीतों के साथ बहुत ही हिट गीत सुनाने जा रही हूं मैं, और अपनी इस खंड की शुरुआत जो है बहुत बहुत ही सुंदर और हिट गीत के साथ कर रही हूं। तो दोस्तों, पहला गीत आप सुन रहे हैं बॉम्बे वाइकिंग्स के द्वारा विकेट लव, और इसके बाद में आपको सुनाने जा रही जुनून आजादी के द्वारा। और इस एल्बम के जो गीत है, इस ग्रुप के जो गीत है, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको। हमको उम्मीद है कि आपको हमारे शाम की जो प्लेलिस्ट है वो जरूर पसंद आएगा।

विकेट लव, प्यार भी कैसा, तो किसी के लिए प्यार स्वीट होता है तो किसी के लिए विकेट. चलिए दोस्तों, आपके लिए प्यार क्या है जरा हमें भी बता दीजिए अपने संदेशों के द्वारा. हम नहीं मुदान ते कमें शिल्वे उलतरो अठन तांसो नुनरो तक निया अठन तांसो लिमोम तक अठन तांसो रोमांटिक एम एम मई द्रो चौन इन तांसो इन एंगे निवेले कतान चौन सही लवंग. अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, बहुत बहुत ही सुंदर गीत है.

नजरों से नजरों की बातें होती है ना दोस्तों, जरा नजरों से कह दो कहीं निशाना छूट ना जाए। जब नजरें एक साथ मिल जाती है तो तब पता चलता है कि ये नजर बहुत बहुत सारी बात कह देती है। तो ये थी बॉम्बे वाइकिंग्स के द्वारा, बढ़ते अगले गीत की और, जुनून आजादी के द्वारा है गीत मेरी आवाज सुनो।

इंसाफ के लिए आवाज उठाया जा रहा है। मेरी आवाज सुनो, ये थी 200 जुनून आजादी के द्वारा। हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। दोस्तों, अगला गीत जो मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, बॉम्बे वाइकिंग्स के द्वारा ही है ये गीत। हमको ये उम्मीद है आपको फिर से ये भी जरूर जरूर पसंद आएगा। तो चलिए गीत सुनते हैं बॉम्बे वाइकिंग्स के द्वारा, मेरे दिल ने तड़प।

तो दोस्तों ये गीत जो था बम्बई वाइकिंग्स के द्वारा थी, और हाँ उस जमाने में मुंबई को बम्बे कहा जाता था। बम्बे वाइकिंग्स एक पॉप समूह है जो भारतीय पॉप और शास्त्रीय संगीत का मिश्रण प्रस्तुत करता है। इसका गठन जो है 1994 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, और इस बैंड की जो शुरुआत है नीरज श्रीधर जो कंचियांग और ऑस्कर और मैट्स ने की थी। इनका जो समूह है क्या सूरत है, वो चली और छोड़ दो आंचल जैसे पुराने बॉलीवुड हिट गानों के रिमिक्स के साथ लोकप्रिय हुआ था। सबसे पहले हमारी भी जब मैंने पहली बार सुना था बॉम्बे वाइकिंग्स का गीत, वो था वो चली, जिसके कारण वो लोग बहुत बहुत ही पॉपुलर फेमस भी हो गए थे। तो चलिए इन इस पॉप ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दी मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं जुनून आजादी इस पॉप ग्रुप के एक और गीत सुनते हैं खुदी, और इस गीत को हम अर्पित करना चाहते हैं आप सभी सभी के नाम।

में आप सभी का स्वागत करती हूँ बहुत बहुत ही सुंदर हंगामा फिल्मों गीतों के साथ। तो चलिए दोस्तों, ये जो गीत आप सुन रहे हैं हंगामा फिल्म का गीत है और शान के आवाज में है, इसका टाइटल सॉन्ग। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले गीत की ओर। बहुत बहुत ही सुंदर गीत है जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। चलिए शुरू हो जाइए और तैयार रहिएगा झूमने के लिए, गाने के लिए, थोड़ा मस्ती करने के लिए। अगला गीत जो है हमारा शान और साधना सरगम के आवाजों में है, गीत चैन।

उनका जो गीत है मैं वो सुना रही हूँ इस खंड में। तो ये जो गीत आप सुन रहे थे चैन जी हाँ शान और साधना सरगम के आवाजों में थे। और हंगामा फिल्म जो है 2003 का इंडियन भारतीय हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रिया दर्शन ने से लिखा और निर्देशित भी किया है और विनस विनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स से ये प्रोड्यूस किया गया है। इस फिल्म में एक्टर्स है अक्षय खन्ना, अफताब, रिमी सेन और परेश रावल। इन्होंने मुख्य भूमिकाएं की है और इसमें जब शक्ति कपूर, राजपाल यादव, टीकू तलसानिया और शोमा आनंदक आनंद सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। चलिए फिल्मों के बारे में आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। फिर सुनेगा बहुत बहुत ही सुंदर गीत हम नहीं अभिजीत और सोनू निगम और अलका याग्निक इन तीनों के बहुत बहुत ही सुंदर आवाजों में।

तो दोस्तों ये गीत है हंगामा फिल्म का, हम तो है तेरे दोस्तों में क्यों हमसे, अभिजीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। बढ़ते अगले गीत की ओर, उसके पहले आपके संदेश की ओर मैं ध्यान देना चाहूंगी। यहाँ पे हाँकते अप्पा बिल्कुल खिल की तरफ से है, जो हमें लिखते हैं ओ कलम ओ हाँकते पाखा तान ले गाय छतु ते तान कहलाने रनती है तेरे मई तेरे मई। तो दोस्तों अगला गीत जो मैं आपको पेश करने जा रही हूँ, ये है हीरो नंबर वन फिल्म का गीत, जो कि मुझे भी बहुत बहुत बहुत ही पसंद है। मोहब्बत की नहीं चाहती, उदित नारायण और साधना सरगम के आवाजों में, और इस फिल्म में है गोविंदा और करिश्मा कपूर।

तो दोस्तों आप लोगों ने सुना है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मंगई नहीं फोर्स ते वा हन मी इन मंगई तीर तप थे ही निलवा तेरो आरन पियांग वे मई थी ननी चुत मी चुंग चांग सुअ नी आ खाना का। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, हंगामा फिल्म का एक और गीत है, तेरा दिल। चलिए ये गीत आपके और मेरे नाम है।

मेरा दिल तेरे पास रहने दे है ना, रोमांटिक ये गीत। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हमारे अगले गीत की ओर। हंगामा फिल्म का एक और गीत सुनाऊंगी और इस गीत के साथ मैं इस खान को अलविदा से अलविदा लूंगी, क्योंकि हम वापस आएंगे रात के 8:30 बजे बहुत बहुत ही सुंदर मेरे चॉइस के गीतों के साथ। 8:30 खानिन का चॉइस लाते करोंगे थकती दोन से उन्हीं चु चौनिन। तब तक आप ट्यून में रहेगा जल्द ही जल्द वापस आएगी अपने बहुत बहुत ही सुंदर चॉइस के गीतों के साथ। तो जाते जाते एक और गीत ऋचा शर्मा की आवाज में है, गीत इश्क। आपसे थोड़ी देर बाद

हेलो नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एफ एम जो वॉइस ऑफ द सबलव साथ पर। दोस्तों आरजे अमोती आपके साथ है इस वक्त अपने चॉइस के गीत आपको सुनाने। जी हाँ, इस खंड में मैं सुना रही हूँ आपको अपने पसंदीदा गीत। तो पहला गीत मैं जो आपको सुना रही हूँ दोस्तों, ये है बहुत बहुत ही प्यारा और मेरा फेव में से एक बरसात 1995 फिल्म का गीत है। कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत बहुत बहुत ही सुंदर आवाजों में। तेरी अदाओं में मरता हूँ, लव तुझे लव में करता हूँ।

0: तो दोस्तों आप गीत सुन रहे थे, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करती हूँ। दोस्तों इस फिल्म में है बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना। बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना इतनी चन्ना फिल्म खानिया इन लोगों के अनमेल ठदून श्यामो ट्विंकल खन्ना पो इन लोगों के लथर वेया अमेल अच्छा एम एक्टिंग लम ही चुआनिन अब बांदोई वे दे उल्हे का चुमिती लवा चुन अमेल ते अच्छा टॉप डिंपल कपड़े फनु खानिया अक्षय कुमार अनुपुई। ओ तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। हाँ ही वे मुझे ये उम्मीद है ये गीत आपको जरूर जरूर पसंद आएगा। इश्क फिल्म का है, अजय देवगन काजोल है इस फिल्म में और आमिर खान जूही चावला भी है। देखो देखो जानम हम उदित नारायण और का यकनिक अनु मलिक के आवाजों में है गीत। कॉमेडी फिल्म है, कभी मौका मिले तो जरूर जरूर देखिएगा। अब मुनम ते मैनिया
1: देखो देखो जानम हम

देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है। तो ये थी दोस्तों बहुत ही प्यारा गीत कुमार सानू का, यज्ञ की आवाजों में कसूर फिल्म का गीत था। कैसा लगा आपको मोइत्रो? चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर। उससे पहले ये संदेश आया है हितेंद्र दास की तरफ से। हम लिखते हैं, हेलो आरजे जी, नमस्कार नमस्कार, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। ओहो हितेंद्र दास, आजकल ना जब अगर बुखार ज्यादा हो जाए तो जल्द से जल्द अस्पताल में दिखाना चाहिए। देरी मत कीजिए, हम उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चौनिन ओमेगा हियानिन एक लिखते है कि अब हन मोरेंटिक थीन तक ए मो छियर पुकन छियर ngam mangdon le nem le o zani na hian kan lo soya zani na intin nge kan lo soi chu mo zani kha intin nge tu lam nge tan don tu pol nge ni don ka pol chu ka soi don la pa tu pol nge ni don ti han top me ni o तो चलिए दोस्तों अगला गीत जो मैं आपको सुना रही हूँ, दिल कहता है चल उनसे मिल, अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गीत है। आमिर खान और मनीषा कोइराला है इस फिल्म में।

तो ये थी दोस्तों, दिल कहता है चलो उनसे मिल। अच्छा ही चुआनिन ये मंगाई देव नहीं पो हियानिन तेरो। जब एक दूसरे से किसी कारण बिछड़ जाते हैं या फिर रूठ जाते हैं तो भी मन करता है, दिल करता है कि उनसे कुछ बातें हो जाए फिर से। जब उनसे कहीं दूर उनसे मुलाकात हो जाती है तो दिल करता है कि चलो जाकर उनसे कुछ बातें करते हैं, लेकिन उठने का जब कोशिश करते हैं तो यूं ही कदम फिर से रुक जाती है। दूदेव एमो कन्मा गई ते देन कन्हा इंति थिंद्रिमा इंति ताव तिरो अचांग ही चुआनी नन्हे ना बकला बा इंगे वब्याक लेते ले खत्यांग हुन ही मुम तक वमन लेते खाचा कुम थिन मासे थिन लुंग यान दू थिन ब्याव मासे इंगे छिया ले थर्शियात ना खानी ना खत्यांग बेलते खा उम्बे थी ना नितरो। तो इसी मामले में है ये गीत भी। उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम जो सो द सलो साथ, आपकी आरजे अमोई आपके साथ है। और जी हमारे जाने का वक्त आ गया है इस खंड के लिए। अगले खंड की ओर बढ़ेंगे हम। अगले खंड में जो है 10 बजे हम वापस आएंगे बहुत बहुत ही सुंदर फिल्मी गीतों के साथ। आपसे थोड़ी देर बाद आप तब वक्त बिताएंगे अपनी आरजे रिनल के साथ, मिजो की बहुत बहुत ही सुंदर गीतों के साथ वो वापस आने वाली है। और तो दोस्तों जाने से पहले एक और गीत आपको सुनाकर जाऊंगी जरूर। लकी फिल्म का गीत है। चलिए ओ सलमान खान संदंगे खानी नो है कंसेगमेंटी कंती तोपंग। तो चलिए इस विदा करने के लिए इस खंड के लिए लकी सुन जरा।

आकाशवाणी आइजोल एफएम जापोइन पसरी अटंग पॉइंट छवा अनि आ जानि ना ताना मिजो सेगमेंट नु नुंग बेरकन लाउ थेंग तारेंग माया एच एल एल मन किमि एलेक्स लेल छवान कि मले ललंगेंग पुई तौ छोंग ते जाय कन गाय थादो रनि दुन सेगमेंट आ ह्या निन कन ए वानवा थक तक मै न एलेक्स लेल छवान कि मले ललंगेंग पुई तौ छोंग ते हे हे हियानि हे खोवेला अनो उम अनुम लौवे अनुम तलो आ कन छेप दिक लोक थेलो लोमले anum to lowa te anan jai moi tak tak ngai thak tur kan na ne roi su van ne thak ria wani chuan in zan in ata na kan hlak ma sabiratan kangai zwal che ti hla zan in tun segment ata na kan hlak ma sabiratan kangai zwal che ti hla hl mon ki mi sak kan ngai thadon ani sms lo thon chur chur ula

नमस्कार, आदर, आभार, आप सभी का स्वागत करती हूँ FM जो 100.7 पर। आरजे अमोईती आपके साथ अपनी आखिरी खंड पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो खंड है हमारा, इस ट्रांसमिशन का आखिरी खंड होगा और इसमें मैं लाई हूँ तोबा तोबा, पिंजर और ऐतराज फिल्मों के गीत। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी इस खंड की बहुत ही सुंदर ओपनिंग करेंगे इस बहुत ही सुंदर गीत तोबा तोबा फिल्म के टाइटल सॉन्ग के साथ, अरुण दगा के आवाज में।

उम्र से हमें क्या लेना देना तेरो, एज इज जस्ट अ नंबर आंटी का। ओ चलिए दोस्तों, ये थी तोबा तोबा फिल्म का टाइटल सॉन्ग। बढ़ते हैं अगले गीत की और पिंजर फिल्म का गीत सुनाऊंगी मैं आपको, दर्द मरिया। चलिए ये जो गीत है हमारे इस ये जो जो भी गीत मैं आज की रात इस खंड में सुनाऊंगी वो आज रात को और भी सुनहरी और रोमांचक बनाने के लिए। कभी सुनाऊंगी मैं आपको रोमांटिक वाला और कभी सुनाऊंगी हंसने हंसाने वाला और कभी झूमने झुमाने वाला। तो चलिए दोस्तों, ये जो गीत है आप सभी

संदेश आया हेलो दिन पे फल कौन दें लाइक की तरह से लिटियार जे प्ले ले तुरखा नंग माता ले लोंगा इसलिए जोंग जोंग तान ले आर जे जोंग जोंग तान ले कच्चियांते जोंग ओ कच्चियांते बिंग शंग शंग अमिते तान ले पापा रिपू तान कुंते या मिंग मोई ते या केवला तुइक्वाल तुइक्वाल अमिते तान अरों तीनी ओ अरों थन सक जोंग जोंग दिखान कन लोंगा इतलाक वेक का बेसे ओ तो अगला गीत मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ तोबा फिल्म का गीत है सुनिधि चौहान की आवाज सुनिधि चौहान ओ जो मोई वे बोक नित्रो सुनिधि चौहान और अर्जुन दगा की आवाजों में है ये

वाह हेना दोस्तों, धमाकेदार। इस गीत के सुनते ही आप यूं ही हाथ पे हाथ थाम कर बैठेंगे तो कुछ तो गलती ही है ना, तो कुछ तो गलत हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले जेलजामा की संदेश की ओर ध्यान देते हैं। आर्जिया मोई देव बोए थे इवे न थो दू थो गाई बोक 10:30 वर्ल्ड कप एन कदू अवा कनवानिन अंग तक एम तेरो आइंग बेगे का टीम सख दोन पो कशन ने क्लोवे हंते 10:30 मा का चन नाखान थो के के ल तेरो चान इन 10:30 आइ रो का चन हंदा मा मई ताला आ मोई ते खोई तकिन नि दुती जो नुना तलो गाई मिलो पुई मई ते ते हन पुई वे मई छी ते पो नि गेम ओ तेरो एंग एंग नांगे मनी आ पुई वे मई ते पोन चा को मलोम ले नेक्स्ट सॉन्ग इतान चवरन तिपो का। चलिए अगला गी जो है हमारे और जेलजामा के नाम जगजीत सिंह, प्रीति उत्तम और कोरेस के द्वारा ही हाथ छूटे। और जी हाँ दोस्तों, गीत का नाम फिल्म का नाम है पिंजर।

ना तो सब बहुत ही कूल ये गीत। ये थी जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम के आवाजों में छूटे हाथ मोड़ा। चलिए बढ़ते अगले गीत की ओर। और जो हमारा अगला गीत होगा इस खंड और इस ट्रांसमिशन का आखिरी गीत होगा। जाने से पहले जाते जाते आपको हंसा कर जरूर जाऊंगी बहुत ही प्यारा गीत सुना कर जाऊंगी दोस्तों। तो सुन रहे हैं आप FM जोशो 107। आपकी आरजे अमोहिती आपसे अलविदा लेती है इस गीत के साथ। एतराज फिल्म का गीत है, अलीशा चिनॉय की आवाज में। ये दिल तुम पे आ गया। शुभ रात्रि।